0: मैं तुम्हें यहाँ रोज आते हुए देखता हूँ, अकेले। किसी का इंतजार कर रही हो?
1: तुमसे मतलब? ओ शिट, आई एम गेटिंग लेट।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 95

0: सभी प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए, शुद्ध र प्राकृतिक
1: स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
2: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन हरू।